तू कुजा मन कुजा और वानी वाला सरंगे शाय बुरबरी है वक्त साथ मुशरवान दे दक्कशान रावीक्षी लखा आओ कने जान बिल्कुल रा ताजा ताजा की जान रा सर प्रोग्राम के बिल्कुल राजवंदी की आओ जान के लगे शान सारा पैदा के खा आओ कना जान मुगुड़ी दा सुदु उदकड़ी दे आओ द खूब सरस के जान मुगुने कंजूसान कड़े मुम कंजूसान कड़े म देखा मके बमुजान प्रोग्राम के ओरे बिल्कुल एक्टिव को द वानी ने बदुम रिकॉल्स दुम मैसेजेस रातलल कना ची सहद बेनो उस द वानी वाला दासी खामोश खामोशी दी तबे क बदवी मायूसुक जुर्माना लगे

बिल्कुल 0335435 बांधे अथा सुबह राशि मुखसरा प्रोग्राम की शिरकत के हुई मुखसरा प्रोग्राम की फल आवाज अल्फाज द्वारा देश ना कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम बरख जोड़ो हुई इंशाल्लाह इंशाल्लाह सासु से किस्मत पूछ हुई पुख्तन हुई जमंग प्रोडक्ट हवाले सरा समूह ने बिल्कुल जी तासु सवाल को ले तासु समंग प्रोडक्ट रावड़े भी दागी तरीके इस्तेमाल तपूस के उलगौड़े नु बिल्कुल जी दासु हक दे तासु कवलेशी समूह ने तपूस भाई तासु के समूह ने तपूस सब मुंगा खुशहाली गुम

साबित करेगा कि वन से अभी तक दो कॉल्स आए हैं और टांग से एक भी नहीं। लेट्स सी जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टांग से कितने कॉल्स आए हैं? टांग से तकरीबन तीन मैसेजेस और दो कॉल्स आए हैं और नो सॉरी ये वाना से, और टांग से अभी तक सिर्फ दो ही मैसेजेस आए हैं। तो अब तगड़े कौन है ये आपके आज मुकाबले है हुरैन? चलो आपने तो उनसे टांग वाने वाले से पंगा ले लिया है ना, आप देख लेना वाने वाले इतना मैसेजेस कॉल्स करेंगे ना कि टांग वाले भूल जाएंगे।

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum and very warm welcome to all the sweet listeners of Global FM 91.8 Radio Pegam 97.4 Paharpur and Radio Aman 88.4 Dark. जी जनाब, तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज है केसन नेचुरल पाकिस्तान की, ये आवाज है शिफा की, ये आवाज है खूबसूरती की, और ये आवाज है सेहत की। जी जनाब, एक नए प्रोग्राम के साथ, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ जनाब, दोपहर की 4 बज चुके हैं, और जनाब 4 बजते ही आपको आपके अपने शहर के रेडियो के ऊपर आपको ये आवाज सुनने को मिलती है एक प्रोग्राम की सूरत में कि जनाब, जिस प्रोग्राम का नाम है केसन टी टाइम शो। जी जनाब, टी बोलते हैं चाय को, और टाइम बोलते हैं वक्त को। तो जनाब, चाय के वक्त में हम आपके लिए जनाब सुरों से भरपूर, मीठी आवाज से भरपूर, प्यारे प्यारे पैगाम से भरपूर और इन्फॉर्मेशन से भरपूर केसन टी टाइम लेके हाजिर होते हैं। तो जनाब, उम्मीद है कि आप भी इस वक्त अपने अपने शहरों के अंदर अगर आप टॉक में मौजूद हैं तो मेरी आवाज सुन रहे होंगे जनाब रेडियो अमन 88.4 के ऊपर, डेरा में मौजूद हैं तो ग्लोबल एफएम 91 के ऊपर, और अगर पहाड़पुर में मौजूद हैं तो रेडियो पैगाम 97.4 की लव फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो जनाब, इन स्टेशन पर मौजूद तमाम गर्ल्स एंड बॉयज, यानी इन शहरों के अंदर सुनने वाले तमाम गर्ल्स एंड बॉयज, अंकल एंड आंटीज, चाचा एंड चाचीज, मामा एंड मामी, दादा एंड दादी, नाना एंड नानी, ऑफ कोर्स सभी सुनने वालों की जनाब खलील ताबे शमान के सलाम, ढेर सारी सलामती की दुआएं, ढेर सारे नेक तमन्नाएं, वेल विशेस जनाब आप सभी के नाम। जनाब, पूरे एक घंटे के साथ होता है आप लोगों के साथ, यानी कि 4 बजे से लेकर 5 बजे के दौरान एक घंटा तीनों रेडियो स्टेशन, तीनों बड़े शहरों से आपके लिए हम ऑन एयर करते हैं बराह रास्त, और इस बराह रास्त घंटे में आपको ढेर कुछ सुनने को मिलता है, और ऐसा कुछ सुनने को मिलता है कि जनाब वो आपकी नीड होता है, आपकी जरूरत होता है, और ऐसी चीजें आप अपने माइंड में लेकर ढूंढ रहे होते हैं कि जनाब मेरी स्किन का ये प्रॉब्लम है, मेरी हेल्थ के साथ ये प्रॉब्लम है, तो जनाब मेरी परेशानी का, मेरी फिकर का हल कहीं से मिल जाए। तो जनाब केसन के इस घंटे में, केसन के इस घंटे के अंदर जनाब आपको आपके तमाम तर फिक्रों का हल, तमाम तर फिक्रों और परेशानियां जो हैं उनके हल आपको मिलते हैं, क्योंकि जनाब केसन वो कंपनी है जो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि दर्जनों प्रोडक्ट आपके लिए बना रही है जिनका ताल्लुक आपके जुल्फ और रुखसार के साथ है।

जनाब केसन के इस प्रोग्राम में कि जिसके नाम है केसन टी टाइम, आपको ढेर सारा वेलकम करते हैं जनाब, और पूरा एक घंटा आप हमारे साथ रहने वाले हैं, तो बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। सामिन ग्राम, आपने अक्सर देखा होगा कि जनाब एक आम का पेड़ है, ठीक है जनाब, और उसके ऊपर बहुत सारे आम लगे हुए हैं। एक आम जो है पक जाता है और पक के गिर जाता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि वो जो आम गिरा है आम से, वो खाने के काबिल हो गया है, यानी कि वो अपनी उसने जो उसकी मुद्दत थी, जो म्याद थी, वो उसने पूरी कर ली है और अब वो खाने के काबिल हो गया है। लेकिन ये जो फिनोमिना है, ये जो एक मिसाल है जो आपको नजर आती है आम की सूरत में, यानी कि एक आम जो है उसी दरख्त के ऊपर एक आम जो है पका हुआ है और एक आम जो है वो कच्चा हुआ है। एक कच्चा है और एक अभी पका नहीं है, यानी कि एक पक चुका है और दूसरा पकने के इंतजार में है। यहाँ कुदरत हमें याद दिलाती है, ये कुदरत के ये नजारे, ये फिनोमिने हमें बताते हैं कि कामयाबी का मतलब, किसी एक की कामयाबी का मतलब हरगिज आपकी हमेशा नाकामी नहीं होती है। ठीक है जनाब, बाजू का हम ये कहते हैं कि यार फलां बंदा तो कामयाब हो गया और मैं रह गया। कुदरत आपको दिखाती है कि नहीं, अगर एक कामयाब हो गया यानी कि एक फल पक गया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि पीछे बच जाने वाले आम जो है खराब हैं या पीछे बच जाने वाले आम जो है नाकाम हो गए हैं। बस उन्हें अपने वक्त का इंतजार करना पड़ता है कि किस वक्त के ऊपर हो सकता है वो जो आम पक गया है वो इनसे पैदाइश में 8-10 दिन पहले हो, ठीक है जनाब, उसके ऊपर धूप की रोशनी का असर ज्यादा हो। लेकिन इसका ये हरगिज मकसद नहीं है कि पीछे वाले आम जो है नाकाम हो गए हैं और जो पक गया वही कामयाब हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से जनाब अपने इंसान को भी दूसरे की कामयाबी देखकर कभी जलसी नहीं होनी चाहिए, और अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि जिस तरह अल्लाह ताला ने उसे कामयाब किया है, अल्लाह ताला मुझे भी एक दिन कामयाब करे।

सिर्फ केसन के बहुत सारे प्रोडक्ट आप लोगों के पास मौजूद हैं जो हम आपको हर रोज बताते रहते हैं। कुछ प्रोडक्ट हमारे हम पुरानी रवायतों से लेते हैं, कदीम तहजीब का हिस्सा और कल्चर का हिस्सा, जैसे कि हम आपको ज़ाफ़रानी फार्मूला देते हैं। ज़ाफ़रानी फार्मूला हमारा जो है वो आपको साबुन की सूरत में भी मिलता है, ज़ाफ़रानी फार्मूला हमारा सोप की सूरत में भी आपको मिलता है। तो जनाब ज़ाफ़रान, संदल और हल्दी तीन इतने ज़बरदस्त किस्म के अज़ा हैं कि जब इन तीनों को मिलाकर हम इस्तेमाल करते हैं साबुन की सूरत में या क्रीम की सूरत में, तो यकीन जानिए कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा महफूज हो जाती है। और आप क्योंकि जनाब पुराने वक्तों के अंदर हर कोई खूबसूरती उस वक्त से चाहता है जब से इंसान पैदा हुआ है और मरते दम तक इंसान बनाओ सिंगार के ऊपर जो है बहुत कुछ सर्व करता है और इसके लिए मेहनत भी करता है, उसके ऊपर वक्त भी लगाता है और जो भी चीज़ें मुयस्सर होती हैं उनको खरीदने की कोशिश करता है और अपने आप को प्यारा लगना चाहता है कि यार मैं हर वक्त प्यारा लगूं चाहे उम्र जो भी हो जाए। तो जनाब पुराने वक्तों में जब आज के दौर की तरह सीरम नहीं थे, आज के दौर की तरह क्रीमें नहीं थी, आज के दौर की तरह फेस वॉश नहीं थे, आज के दौर की तरह साबुन नहीं थे, तो उस वक्त भी लोग प्यारा लगना चाहते थे और ये उनका हक भी था और ये हर किसी का हक है प्यारा लगना।

जनाब उस वक्त के लोग भी प्यारा लगना चाहते थे, तो उस वक्त जो चीजें मुयस्सर थी उन चीजों से लोग जो है खूबसूरती को अपनी खूबसूरती को संवारते थे। तो केसन ने ना सिर्फ वो मॉडर्न फार्मूले बनाए हैं बल्कि पुराने पुराने वक्तों में जो चीजें इस्तेमाल की जाती थी उनको भी अपनी जो है स्किन के रूटीन में अपनी प्रोडक्ट्स का हिस्सा, प्रोडक्शन का हिस्सा बनाया है। तो जनाब आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस गर्मी के अंदर केसन की जो बहुत ही प्यारी फार्मूलेशन है जिसे हम जाफरानी फार्मूला कहते हैं। जाफरानी फार्मूला मतलब ये है कि जाफरान, हल्दी और संदर से बनी हुई हमारी हमारा सोप है और जाफरान से बनी हुई हमारी क्रीम आप लोगों के दरमियान में मौजूद है और ये बहुत ही यूनिक फार्मूलेशन है। इसका कोई कंपेयर कोई कंपटीटर नहीं है मार्केट में आपको कोई भी केसन की। हमेशा एक चीज मैं आपको बता दूं अल्हम्दुलिल्लाह और इस चीज के ऊपर हमें फख्र है और हम सीना चौड़ा करते हैं इस बात के ऊपर कि हम किसी की कॉपी नहीं करते हैं, हम किसी भी कंपनी की कॉपी नहीं करते हैं। कंपनियां हमारा ट्रेंड फॉलो करती हैं, हमारी चीज़ों को फॉलो करती हैं लेकिन हम किसी को फॉलो नहीं करते हैं। हमारे माहिरीन अपनी तर्ज का एक हम यूनिक फार्मूला बनाते हैं जो किसी और के पास नहीं होता है, जैसे कि ज़ाफ़रानी फार्मूला है। आप पूरी मार्केट घूमें, ठीक है जनाब, बाजार जाएं, टांक में रहते हैं, पहाड़पुर में रहते हैं या फिर आप डेरा इस्माइल खान में रहते हैं, आपको किसी और कंपनी का ज़ाफ़रानी फार्मूला के जिसके अंदर हल्दी, संदल और ज़ाफ़रानो नहीं मिलेगा, सिर्फ केसन का मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप नाइट क्रीम खरीदें तो ज़ाफ़रानी फार्मूला क्रीम जो है ऑनलाइन आपको मिलती है लेकिन ऑनलाइन हर किसी की रसाई नहीं होती है, लेकिन केसन के तवस्सुल से आपको हर गली कूचे के अंदर, हर बाजार के अंदर, छोटी बड़ी दुकानों के ऊपर ये ज़ाफ़रानी फार्मूला मिलता है। अभी तक आप बहुत सारी मुज़र केमिकल से बनी हुई क्रीमें, जैसे कि मैं आप लोगों को उस दिन बता रहा था कि ये जो ब्यूटी पार्लर्स के अंदर जो क्रीमें बनती हैं या जो दुकानदार आपको फार्मूला क्रीमें बनाकर देती हैं, ये कोई मास्टर नहीं है, ये कोई स्पेशलिस्ट नहीं है स्किन के ये आपको आपके स्किन के मुताबिक प्रोडक्ट बनाकर देंगे, बल्कि ये मार्केट में बिकने वाले जो स्टीराइड्स होते हैं, पोटेंट स्टीराइड्स होते हैं, जैसे कि क्लोबीविट है, जैसे कि डर्मोस्किन है या फिर जैसे कि बेटनोविट है, जैसे कि लाजमा क्रीम है, ठीक है जनाब, हाइड्रोकोनिन है, इन तमाम क्रीमों को यकजा करके उसके अंदर मार्केट से कुछ क्रीमें खरीद कर आपको फार्मूला बनाकर दे देते हैं। और ये वो चीज़ें हैं, ये वो क्रीमें हैं जो आप परमानेंट कभी नहीं लगा सकते हैं, ये अलाउ नहीं होती, ठीक है जनाब। मिनिस्ट्री FDA इन क्रीमों को अलाउ नहीं करती। मैं मेडिसिन से आया हूँ तो मैं इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। FDA जो है कभी भी आप लोगों को ये क्रीमें कि जिनके अंदर स्टीरॉइड्स हों, जैसे कि क्लोबीविट है, लाजमा है, बेटनोविट है, ये हाइड्रोकोनिन है, ये क्रीमें आप कभी भी रेगुलर यूज नहीं कर सकते हैं। ये जो क्रीमें बनी हुई मिलती हैं मेडिकल, ये भी आप डॉक्टर अगर आपको लिखेगा तो वो भी 15 दिन के लिए, इससे ज्यादा डॉक्टर आपको नहीं लिख सकता क्योंकि ये स्किन को झुलसा देती हैं। लेकिन जब आप ब्यूटी पार्लर से कोई क्रीमें खरीदते हैं तो वो आपको रेगुलर यूज करनी पड़ती हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनके अंदर, उनके पास नॉलेज नहीं होता है, ठीक है जनाब, उनको समझ नहीं आती है कि ये चीजें जो है रेगुलर देनी चाहिए। वो सिर्फ रिजल्ट देखती हैं, ठीक है जनाब, वो सिर्फ रिजल्ट देखते हैं कि भाई इन क्रीमों को मिक्स करने से इतने अच्छे रिजल्ट आ गए हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये रिजल्ट किस वजह से आए हैं। और रेगुलर यूज करने से खवातीन जो है, हमारी बहनें जो है, अपने स्किन का बेड़ा गर्क कर देती हैं, फिर उनके चेहरे के ऊपर गैर जरूरी बाल भी आना शुरू हो जाते हैं, उनकी स्किन जो है फटने भी लगती है और उनकी स्किन खराब हो जाती है, पतली हो जाती है, यहाँ तक कि वेन्स भी जो रगें होती है वो भी नजर आना शुरू हो जाती हैं। सो केसन नेचुरल पाकिस्तान अपने प्लेटफॉर्म से आपको जो क्रीमें देते हैं उनके अंदर किसी किस्म की क्लोबीविट नहीं होती, किसी किस्म के मुजर केमिकल नहीं होते। वाहिद क्रीम है केसन की, केसन के जिसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है मुजर केमिकल से पाक क्रीम, ये बड़ा बड़ा जुमला हमने लिखा हुआ है क्योंकि हमने इसी बात के ऊपर मेहनत की थी, इसी बात के ऊपर फोकस किया था कि केसन जो आपको नाइट क्रीम देगी, जो ब्यूटी क्रीम देगी, वो हर किस्म के स्टीराइड से पाक होगी। दैट्स व्हाई हमने बहुत बड़ा हेडलाइन में लिखा हुआ है मुजर केमिकल से पाक, ठीक है जनाब। इसका मतलब ये है कि हम दावा कर रहे हैं कि हमारी जो लोग क्रीम इस्तेमाल करेंगे वो नेचुरल वाइटनिंग एजेंट से बनी हुई होगी, यानी कि अल्फा आर्बुटिन से बनी हुई, यानी कि कोजिक एसिड से बनी हुई, यानी कि नियासिनमाइड विटामिन B3 से बनी हुई, यानी कि विटामिन B5 से बनी हुई, यानी कि विटामिन C से बनी हुई, यानी कि इन चीजों से जो कि सेफ है, जिनको FDA रिकमेंड करती है, जिसको हेल्थ के तमाम तर, जिसको स्किन के तमाम तर प्लेटफॉर्म अलाउ करते हैं कि स्किन को गोरा
अदा करने के लिए, वाइट क्रीम करने के लिए इन चीज़ों को आप क्रीमों के अंदर ऐड करें तो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि लोग प्यारे होंगे, खूबसूरत होंगे, चिट्टे होंगे।

0: खींचना, प्यारा लगना, सब कहा के टी टाइम है। लेकिन गर्मी की शिद्दत कुछ इस तरीके से है कि मेरी भी आपको कुछ लगा होगा कि मैंने कोई ठंडी चीज पी है।
1: खुद को देखें,
0: चाय का भी अपना वक्त होता है जनाब, महीना डेढ़ इंतजार कर लें फिर चाय, टी टाइम में चाय पियेंगे। लेकिन अभी तो आजकल टी टाइम में गर्मी की शिद्दत चूंकि ज्यादा है तो कुछ ठंडे मशरूबात ही हम लोग पी रहे हैं और आप भी डेफिनेटली पी रहे होंगे। सो जनाब, जब हम क्रीम्स की बात करते हैं और टॉपिक आज का मैं आपको बता दूं ताकि उसके ऊपर आप थोड़ा सा सोचें भी सही ना। हाँ जनाब, टॉपिक हमारा ये है कि एक पुराना दौर था और एक नया दौर है, ठीक है जनाब। दो दौर और नए दौर की हमने, पुराने दौर की यानी कि पुराने वक्तों में जो चीजें इस्तेमाल होती थी, हमने आपको क्रीम दी है जिसका नाम है केसन नाइट क्रीम यानी केसन जाफरानी क्रीम। तो जो जनाब नया दौर है उसकी क्या चीज है, नया दौर की कौन सी चीज है, नया दौर का जो फॉर्मूला है जनाब वो ग्लूटाथियोन फार्मूला है। ग्लूटा

जनाब, तीन चीजें हमने आपको नए फॉर्मूले के अंदर दी हैं, ठीक है जनाब। इसके अंदर फेस वॉश भी है, यानी कि दो व्हाइटनिंग के फॉर्मूले हैं, ठीक है जनाब। इस दुनिया के एक पुराने वक्तों का है कि पुराने वक्तों में लोग क्या करते थे, वो भी हमने आपको फार्मूला इंट्रोड्यूस करवाया है जाफरानी फार्मूला की सूरत में, यानी केसन की जाफरानी क्रीम भी है, जाफरानी सोप भी हमने आपको प्रोवाइड किया। जाफरानी का फेस वॉश नहीं है, लोग बहुत सारे मांग रहे हैं, लेकिन फेस वॉश हमारे बहुत ज्यादा हो गए हैं तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, तो इस वजह से हम, हालांकि अभी हमें लोग कह रहे हैं कि एक दो और फेस वॉश भी लॉन्च करें, ऑलरेडी हमारे चार किस्म के फेस वॉश चल रहे हैं, ठीक है जनाब। तो जफरानी के फेस वॉश नहीं है, साबुन है, लेकिन जो जदीद दौर का फार्मूला है जिसे बहुत कामयाब माना जा रहा है, और ये है भी बहुत ही कामयाब, ये ग्लूटाथियोन के ऊपर मुश्तमिल एक फार्मूला है, और इसका कंपनी, जितने भी कंपनियां बना रही हैं ये फार्मूला, इसका नाम रखते हैं ग्लूटावाइट। हर कंपनी ने इस फार्मूले का नाम ग्लूटावाइट रखा हुआ है, ठीक है जनाब। आप मार्केट में जाएंगे और अगर आप केसन के ऊपर सोल्ड हैं और आप ये समझते हैं कि भी केसन की हर प्रोडक्ट बहुत अच्छी होती है, तो केसन की ग्लूटावाइट फार्मूला भी बहुत अच्छा होगा। तो आप जब मार्केट जाएंगे तो मार्केट में दुकानदार से बोलेंगे जनाब केसन की ग्लूटावाइट, ठीक है जनाब। इस वक्त 8-10 कंपनियों ने ये फार्मूला बनाया है। ये कितना अहम फार्मूला है, ये कितना लग्जोरियस और कितना इफेक्टिव फार्मूला है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने ये फार्मूला लॉन्च कर दिया है। इवन कि मैं आपको बताऊं कि जो क्रीम, जो ब्यूटी क्रीम होती है ना, ये सबसे पहले किसने बनाई थी? गोल्डन पर्ल वालों ने बनाई थी, ठीक है जनाब। लेकिन अभी आप देखें कि ये इतना कामयाब हो गया है कि लोग अब वो पुरानी क्रीमें नहीं खरीद रहे, ठीक है जनाब, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं। तो उस कंपनी ने भी, यानी कि गोल्डन पर्ल ने भी अपनी क्रीम बना दी है और उसके अंदर डाल दिया भी ग्लूटाथियोन। अब वो कहते हैं कि भाई लोग तो अब पुरानी चीजें खरीदते नहीं है इतनी, तो नया फार्मूला खरीदते हैं, तो उन्होंने भी ग्लूटाथियोन ऐड कर दिया अपनी क्रीम के अंदर। सेल जब डिस्टर्ब होती है तो पता चल जाता है ना कि लोग किस तरफ जा रहे हैं, तो देखते हैं कि भाई लोग अब क्या चीज लगा रहे हैं। बेसिकली जो ग्लूटाथियोन फार्मूले का फायदा है वो ये है, आपकी जो स्किन है ना सामिनी कराम, आपने अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि एक क्रीम एक वक्त में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही होती है, लेकिन कुछ वक्त जैसे गुजरता है तो वो क्रीम आपको वैसा रिजल्ट नहीं देती है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि कंपनी ने दो नंबरी शुरू कर दी है। कोई कंपनी बेवकूफ होगी जो लाखों रुपए का बिजनेस खराब कर दे, अपनी क्रीम दो नंबर क्रीम आपको बनाकर दे दे, तो वो तो उसका एक बैच होगा, उसके बाद लोग खरीदने की। असल वजह ये नहीं होती है कि कंपनी ने दो नंबरी शुरू कर दी है, असल वजह ये होती है कि आपकी स्किन रेजिस्ट कर जाती है उस क्रीम को, ठीक है जनाब, यानी कि मुजाहमत कर देती है। वो जो फार्मूला आप एक अरसे से लगा रहे थे, बिल आखिर वो फार्मूला रेजिस्ट हो गया, ठीक है जनाब, वो फार्मूला, वो क्रीम आपकी स्किन के साथ रेजिस्ट हो गई, यानी कि मुजाहमत देने लग गई है कि अब वो उसके ऊपर असर नहीं करती। अब उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आपको स्विच करना पड़ता है एक और फार्मूले की तरफ। मैं आपको सिंपल अल्फाज में अगर समझाऊं तो ये होगा कि जनाब आप एक, मैं आपको बताऊं कि जब पहले, आज से 10 साल पहले जब मलेरिया होता था तो बैसोक्वीन की एक टैबलेट होती थी, 2-3 टैबलेट ली जाती थी, मलेरिया क्योर हो जाता था, मलेरिया ठीक हो जाता था। फिर कुछ अर्सा हुआ कि लोग, मलेरिया ठीक नहीं होता था, रिसर्चर्स ने बताया कि भाई ये गोली रेजिस्ट कर गई, आप इसे 4-10 गोलियां भी खिला देना तो उसका मलेरिया ठीक नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ, उसके साथ एक और फार्मूला आ गया मलेरिया के लिए, आर्टिमीटर का, ठीक है जनाब, आर्टिमीटर को ऐड कर दिया गया। जब आर्टिमीटर दिया गया तो बिल्कुल लोग ठीक होना शुरू हो गए, यानी कि 5-6 साल ये फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से चला, मेडिसिन के लोग जानते हैं। लेकिन 5-6 साल जैसे गुजरे ना, फिर ऐसा हुआ कि लोगों का मलेरिया खत्म नहीं हो रहा था, तो फिर एक दफा फिर से रिसर्च की गई और एक और फार्मूला बनाया गया, यानी आर्टिमीटर के साथ लोमिफेंड्रीन को भी ऐड किया गया। अब लोमिफेंड्रीन 2011 में लॉन्च हुई और आज 2027-26 है, यानी कि 16 साल हो गए, अभी तक वही फार्मूला सबके ऊपर काम कर रहा है। ये मैं मलेरिया की बीमारी की बात कर रहा हूं आपको, ठीक है जनाब। रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं कि किस तरीके से आपकी बॉडी किसी भी चीज को मुजाहमत करती है, किस तरीके से रेजिस्ट करती है। तो बैसोक्वीन से जो लोग पहले ठीक हो रहे थे वो रेजिस्ट कर गई, वो गोली काम करना छोड़ गई। फिर आर्टिमीटर आ गया, आर्टिमीटर ने भी काम करना छोड़ दिया। फिर उसके बाद लोमिफेंड्रीन को ऐड किया गया कि आप इन दोनों चीजों को मिलाकर लोगों को दें, इनका मलेरिया ठीक होगा। तो आज 2011 में ये लॉन्च हुए थे और आज 2026 है, लेकिन अभी तक
लोग उसी दवाई से ठीक हो रहे हैं, यानी कि अब वो परफेक्ट फार्मूला आ गया। अब ये जो ग्लूटाथियोन का फार्मूला लॉन्च किया गया ना, ये उन्हीं लोगों के लिए लॉन्च किया गया जिनको पुरानी क्रीमें अब रिजल्ट नहीं देती हैं, यानी कि जिनकी स्किन रेजिस्ट कर गई है पुराने फार्मुलेशन के थ्रू। वो कभी ये मत सोचे कि क्रीम ने दो नंबरी आ गई है, कंपनी दो नंबरी कर रही है, बल्कि उन्हें जरूरत है कि वो अपनी फार्मुलेशन को चेंज करें, वो ग्लूटाथियोन फार्मूले की तरफ है। तो इस वक्त मार्केट में ग्लूटाथियोन की क्रीम भी मौजूद है, नाइट क्रीम भी है, डे एंड नाइट क्रीम भी है, ग्लूटाथियोन का फेस वॉश भी है, ग्लूटाथियोन का साबुन भी है। अब केसन के पास इन चारों आइटम में से क्या मौजूद है? नंबर वन, हमारे पास ग्लूटावाइट का फेस वॉश मौजूद है जिसकी कीमत है 450 रुपए। दूसरे नंबर पर हमारे पास ग्लूटावाइट का केसन का सोप मौजूद है, साबुन मौजूद है जिसकी कीमत है 250 रुपए। तीसरे नंबर पर हमारे पास केसन का ग्लूटावाइट डे एंड नाइट क्रीम। अब ये डे एंड नाइट है, आपकी मर्जी है, इसको आप रात को लगाएं या आप दिन को लगाएं, या रात को भी लगाएं और दिन को भी लगाएं, डुअल आपको जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। तो केसन इस वक्त मार्केट की अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो पहली कंपनी है। डेरा टांग पहाड़पुर में आप बाजारों में जाएं, किसी से पता करें कि एक कंपनी की क्या तीनों चीजें मौजूद हैं, कि जिसकी क्रीम भी हो, जिसका साबुन भी हो, जिसका फेस वॉश भी हो, तो आपको एब्सोल्युटली नॉट में जवाब मिलेगा। क्योंकि किसी कंपनी ने सिर्फ साबुन बनाया है ग्लूटाथियोन का, किसी ने सिर्फ फेस वॉश बनाया है, किसी ने फेस वॉश और क्रीम बनाई है, किसी ने सिर्फ क्रीम बनाई है। तो केसन के पास अल्हम्दुलिल्लाह एबिलिटी और हमारा वास्ट प्रोडक्शन के एरिया और प्रोडक्शन सिस्टम के, जिसमें हम आप लोगों को तीनों वेरिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी जेब के मुताबिक कि आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि आजकल के दौर में जिसने ग्लूटाथियोन फार्मूला नहीं लगाया ना, तो फिर उसने क्या लगाया यार, है जी।

0: ग्लूटा व्हाइट केसन कंप्लीट रेंज, नए दौर का नया व्हाइटनिंग फार्मूला।
1: जी जनाब, नए दौर का नया व्हाइटनिंग फार्मूला है और इसे जरूर ट्राई कीजिएगा जनाब। क्रीम इसकी भी मौजूद है और हमारी 30 ग्राम की ये क्रीम है और आप दिन के वक्त थोड़ी सी मिकदार लगाएं, ठीक है जनाब। अगर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, ठीक है जनाब, तो आप जब डे एंड नाइट लगाएंगे तो रात को भी ये क्रीम आपकी स्किन के ऊपर काम करेगी और दिन के वक्त भी आपकी स्किन के ऊपर काम करेगी, ठीक है जनाब। और अगर दिन को नहीं लगाना चाहते कि बहुत ज्यादा काम होते हैं आपके, आपने बहुत ज्यादा टेम्परेचर में क्या कहते हैं, हाँ जनाब, अच्छा थोड़ा सा सब्र कर लिया करें, और आप सब्र बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और सवाल जो है हमारा वो ये है, आपने ये बताना है नया दौर और पुराना दौर के हवाले से हम बात कर रहे थे आप लोगों के साथ, नए दौर का आपको क्या अच्छा लगता है और पुराने दौर की अच्छी बात, यानी कि एक पुराने दौर की अच्छी बात आपने बतानी है और एक नए दौर की अच्छी बात जो है आपने बतानी है। तो नए दौर का नया फार्मूला केसन ग्लूटा व्हाइट फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इस वक्त ग्लूटाथियोन, आखिरी बात मैं आपको बता दूं, उसके बाद मेरी जो कोल्ड ड्रिंक है ना जनाब, जो मशरूब मशरक मेरे सामने पड़ा हुआ है ये

0: सब जी जनाब, आप लोगों ने बिल्कुल शर्माना नहीं है और प्यारा लगना तो आप सब लोगों का हक है, चाहे आप टांग में रहते हैं, चाहे आप पाड़पुर में रहते हैं, चाहे आप डेरस मिल खान में रहते हैं, प्यारा लगना आप सब लोगों का हक है। और प्यारे तब लगेंगे जब आप अपनी एक्स्ट्रा केयर करेंगे। और केयर करने से पहले जनाब एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है और उनको हम मौका इस वक्त जरूर देंगे क्योंकि काफी देर से वो हमें कॉल कर रहे हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जनाब कौन इन सारे नाल ना से सो अपना। हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: जी जी जी सही हेलो क्या दे पे तुरी आवाज गाल दी समझ नहीं आती पी सकू जी। हेलो जी जनाब जी जनाब अच्छा जी आवाज की आपकी समझ नहीं आ रही तो आप जगह चेंज कीजिएगा अपनी और फिर हमें कॉल कीजिएगा जनाब। और बात कर रहे हैं केसन ग्लूटा वाइट के हवाले से बात कर रहे हैं आप लोगों के साथ। केसन ग्लूटा वाइट कंप्लीट रेंज। और मैं आपसे कह रहा था कि जिन लोगों को जल्दी हो रिजल्ट की कि भाई रिजल्ट जल्दी मिलनी चाहिए वो डे एंड नाइट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। SPF भी मौजूद है। दिन के वक्त लगाने से आपको क्या होगा कि जनाब सनब्लॉक सनस्क्रीन की बेनिफिट्स भी देती है केसन ग्लूटावाइट क्रीम। और एक और कॉलर जी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम खलील भाई, हाल सुना
0: जनाब? क्या हाल है? ठीक ठाक है ना? नाम बताएंगे जनाब अपना? ना जैसे सो अपना सही ना बिल्कुल सवाल सारे को बहुत लोग करेंदे अक्सर लोग सब कोई गाल करेंदे कि कोई फार्मूला बनाओ जेरे वाला को काला करे। असल च ये जेरे वाला को काला कराने वाले जितने भी फार्मूले होंदे ना इन्हां दे विच बहुत ही खतरनाक किस्म दे केमिकल होंदे। ठीक है सही। ते सारी जेरी कंपनी है ना वो सेफ शयां बनांदी है यानी लोगों को नुकसान न पहुंचे। ठीक है सही। ऐसा भरपूर कोशिश है कि कोई ऐसा कुदरती फार्मूला बनाऊ। एक तो मेहंदी होंगी है कुदरती तरीका है कि मेहंदी इस्तेमाल की करो ओही कुदरती तरीका है तुम्हारे वालों को रंग करने वास्ते ना। ठीक है सही। सारी कंपनी चूंकि सारे खालिस से कुदरती शियां बने दिए तो वो फार्मूला सारी कुदरती शियां च नहीं आंदा बिल्कुल भी।
2: अच्छा।
0: असर ही वजह को उन्दे वास्ते माजरत चाहते हैं कि बहुत सारे कंपनियां मौजूद हैं इस्तेमाल करो तो जल्द कोई सा कोई पॉसिबिलिटी नजर आई कि भाई नेचुरल तरीके से कोई ऐसी शय बढ़ा सकते हैं तो असर तो जरूर बढ़ा के देसू। तो हूं मैं को ये दसो कि पुराने वक्त की केरी गाल चंगी है तो नवे वक्त की केरी गाल चंगी है।
2: यार पुराने वास्ते भी गाल मसले इन जो सारी तेरी तभी ने को ना सब देने क्यों करना था आलो सफा अब कह रहे कहने ये सोच ना उसके ना खोसा बसीर तेरे गाल ये मजे लेने ते ऐसा के चलो पर मूले तो ही नहीं तेरे सोचा अरबी मसा।
0: अच्छा तो आपको नहीं याद आने पे कि पुराने दौर दी केरी गाल चंगी है ते नवे दी केरी चंगी है जी।
2: यार नवे भी चंगे तो पुराने चंगे के बारह दिन सारे जिंदगी को टपाउने
0: जिंदगी को टपाउने। चलो ठीक है ईसब खान बहुत मेहरबानी से इस नाल मौजूद है तो बहुत शुक्रिया जनाब नवाज जी। जनाब फार्मूले की बात कर रही है और फार्मूला हम बहुत सारे बना रहे हैं आप लोगों के लिए और खवातीन के लिए तो हम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि हमने बहनों के लिए एक स्पेशल सा फार्मूला बनाया है फेस वॉश के अंदर जिसे हम कहते हैं प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश।
3: फेस वॉश चेहरा लवली बनाए क्योंकि यह खास फार्मूला वुमन जो आपको अपना हक दिलाए। हाँ आपको अपना हक दिलाए केसन प्योर व्हाइटनिंग लवली फेस वॉश आपका हक आपके पास।
0: जी जनाब आपका हक आपके पास। और एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम लाला खलील।
0: जनाब शिराज अली शहानी सनल मौजूद इन सही क्या हाल जनाब? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। तुसा सुनाओ सही ठीक ठाक? चाह पीती बैठे वे कि चाह हाल तक पीवनी है तुसा?
4: नहीं लाला चाह पी के कहे बैठे अपना बगैन दी छां तले संगती दोस्त बैठे हैं तुम्हारे प्रोग्राम सुन ले पाए।
0: अच्छा बगैन दी छां तेरे बाद हवा चलदी पई है कि ना? پروگرام لگا پیا ہوا مزہ دو بالا تہ بالا ہو سی
4: بلکہ لالا خلیل صاحب جو وعدے بیٹھے ہیں اپا ٹیچر صاحب کو اللہ تعالی کی نعمت دیتی ہے جی کیسن دا نام دیتا ہے اللہ تعالی
0: اچھا جی ماشاءاللہ
4: اللہ تعالی کی نعمت دیتی ہے تے سر جی ہندا جڑا پروڈکٹ استعمال کرے ہوندا قدرت یاد آویندی اللہ دی
0: قدرت یاد اصل گل تے اسا قدرت دے خزانے بھائی تواری طرف گن کے ہیں پروڈکٹس دی صورت وچ
4: بالکل اللہ دا ایک قدرت یاد آ نہیں دے وچ بڑا جادو ایسا تے جڑا پروڈکٹ استعمال کیتا ہے ہضم کنٹرول کیتا ہے یا گلوٹامیٹ کیتا ہے یا زعفرانی کیتا ہے یا شفائے درد کیتا ہے یا جتنے بھی نا سارے سارے گھر وچ موجود ہیں پروڈکٹ
0: ماشاءاللہ جی
4: اساں تا لوگاں کو آکھوں جتنے بھی سن دے فرینڈز او ساتھ کے سان دے سنگ جڑ ونجو تے بے فکری نال سارے نال اعتبار کرو تے اللہ گیند رہونی اے تو بے فکری نال نہ جڑا پروڈکٹ استعمال کرے سے انشاءاللہ اوندے رزلٹ ہو سی
0: اوندے جی رزلٹ ہو سی تے رزلٹ وی او رزلٹ جڑا بغیر سائیڈ ایفیکٹ ہوندے کچھ شیراز بھائی رزلٹ مل ویندے کچھ رزلٹ مل ویندے بغیر سائیڈ ایفیکٹ دے اگر تسا کہ کمپنی کو جوائن کرنا چاہندے وے تو سائیں کیسن ہے پتا لگ سی یار واقعی نیچرل اجزاء کو بنے ہوئے پروڈکٹ کے چھوڑنے کے باوجود بھی سکن خراب نہیں تھی جناب ہوں دسو پرانے وقت دی کوئی چنگی گل تو کوئی یاد آندی ہے کہ سارے چنگے گل دور چین
4: جی جی پرانے دور جی اچھی دوستی ہونی صاف ستھرے لوگ ہونے بےمانیاں کون آدی
0: مخلص
4: اچھے لوگ ہونے وہ مزے دیا گالی ہونی سر جی جہاں ہوں نواں دور آ نکلا تا نویں دور دیا گالیاں اچھی ہیں جو لوگ ایڈوانس چلتے ہوئے ایڈوانس گالی کا پین پین
0: پیارا لگنا

0: जनाब ब्यूटी किंग कहा जाता है केसन को, क्योंकि केसन आपके पांव से लेकर जनाब सर तक की खूबसूरती का ख्याल रखती है। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम खलील साहब, जवान भतीजा, क्या हाल है? ठीक हो
0: चाचा फतेह खान? क्यों हाल है चाचा? ठीक ठाक बदे वे तुसा?
1: अल्लाह की मेहरबानी है। क्या कठारा भाई खान तो साल करते हैं 291 से सुन लेता लगा जी तुते।
0: अच्छा आज 91 सही आना भी है?
1: खुदा रखी कितना सीधा लेता है तकरीबन रोज की पंजी फुट तक।
0: ओहो पंजी फुट ते लाके
1: 91 गर्मी थी जा बढ़ गई है।
0: अच्छा ये थोड़ा तुम्हारे को हट गर्मी है जी थोड़ा सीधा का मसला होता है।
1: 91 नहीं आता 96 नहीं आता
0: रेडियो सुन का मौसम असल के सर्दियों का मौसम या गर्मियों का?
1: सर्दियों का मौसम ठीक होते
0: राजे गफूर पहुंचाया या मैं को आपे आवना पोसी मोटरसाइकिल ते किक मार
1: कोनी पुछाया राजे गफूर पुछाया कोनी काला करने छोड़ के पता रे खैर है जा वैर
0: है सर। अच्छा तो आपको काला करना छोड़िए साकु तो काल करे ना रंदा रोजाना करे ना भाई चंगी गाल दसी वो असा तो डिठा है असा तो नहीं डिठा
1: पुराने
0: दौर दीवार के मतलब वरे साल को आते वरें दी दीवार थी
1: गर्मियां ते मौसम आ जा आज वरें दी दीवार थी वर क्या थियो यार।
0: अच्छा जी
1: ये जिया वा तोर दा रजाल ते निकले ते साल को वरें सरे ने सरे की ते
0: ठीक है तो ये इना गाल दा के मकसद वरें दी दीवार मतलब लोगों दे कोल टाइम बहु होंदा है उ दौर दे विच कम नहीं होंदे ने दे
1: तो वड्डी दी हार थी जाए तो जाट बने आ साते बने आ
0: ठीक है बहुत शुक्रिया। रेडियो पैगाम 97.4 ग्लोबल एफएम 91 और रेडियो अमन एक साथ
2: घना बनाए दे नया।
0: मुझे कहते हैं खलील और ये है केसन नेचुरल पाकिस्तान का केसन टी टाइम शो, यानी के वो शो जो चाय के वक्त में हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। राजा गफूर हमारे साथ हैं इस दफा, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, इधर मतलब है चाचा फतेह खान नाल मेरे को मोहब्बत है सही दिल में।
0: तुसा ओना तो को जिक्र कीते तो को याद कीते तो फौरन तो निकाल ठा था ये ऐसे
3: ओ इन याद है बेकार निकले के भी मोहब्बत है काल दे तू काल लगना कोई सोका काम
0: काल दे तू काल लगना जी तरह शहर मुकाबला कीती पवन काला मिलावण दे तो उंद विच राजे गफूर दी काल एग्जैक्ट टाइम ते मिल वने ते बहुत बड़ी सही है ता
3: असल सिद्धि गाने उनका नंबर मेरे को गिए थिएटर में नंबर कर यू दा च लाइव दे।
0: अच्छा नहीं मैं को जरे कॉल की थी पहन तो जोंग वाले नंबर को कॉल की थी बते अंत तक कोई
3: हां वो नंबर है वो नंबर 5-6 भाई कठे आने रल मिल गए पता नहीं लगा।
0: अच्छा तू सावत शो दे बाद राजा चाचा फतेह खान घंटी करे सो राजा गफूर दो। जितने भी फार्मूले हैं जिवे के ज़ाफ़रान संदल
3: उस टाइम हो गया ने हल्ला फिर घटे नाते तेल घटे ने बाटोड़ बने ने
0: पिछे ते गाले सो कोई याद ही कोनी सही है से।
3: अच्छा जी जी हो ले दो रांदा पिए ते सन बला गांदी पिए ते जी کریم آدھے تھے کریک کریم ہے جی تے سدرا کریم ہے تے ہمیرا کریم ہے تے ایں آدھو کئی نام نکل جان جی میں مار دور اپ دا نام کریم دا ہوں میں نام آندا پئی ہے
0: ٹھیک ہے جی
3: ایک کریم ائی شہین کریم میں کو سدور تے گیا با کا لالا شہین تا دیتا ہاں تے تے اے کیسے شہین کیسے ہوندی ہے مکا شہین ایک کریم ہے ایک شہین پکھی ہے ہاں
0: بالکل جھیل سیف الملوک بندہ مل گیا شاہین چاتی بتائی عقاب بہت سونا بہت زبردست میں فوٹو چھک پیسا ہوں لالا پیسے میں گنسا میں کتنے پیسے پانچ سو روپیہ میں ایک فوٹو چکا ہوں 500 روپیہ اوہاں کہ بھرا ساری تا یہ مزدوری ہے یہ سیزن ہوندا ہے اوندے بعد سردیاں کوئی نہیں آندا میں کہ چل تسا بعد میری ٹک ٹاک آئی ڈی دی ونگ کی لکھا ہے میں اتھے بڑے زبردست قسم دے پوز مروین یار شاہین دے نال شاہین کو یاد آ گیا
3: واقعی میں ڈراما تے سدے درانے سمندر تے نہ بڑے نے کو سباری بدل بنتیا یار تو شہر و تفریح تے کچاوے تے اوہ کرایہ گندن نہ کو واپڑا
0: بالکل کرایہ گندن ٹھیک ہے سی مہربانی سے شکریہ

0: अच्छा जी,
1: और घर में सब होते तो बहुत अच्छा लगता था। अब तो कोई रिश्तेदार भी घर में नहीं आता और घर वाले भी चाहते हैं कि वो शादी हाल ले जाए ना, हमारा तजुर्बा होता है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं कहती सब उसी तरह है ना।

0: घर का कोई पता नहीं होता कि शादी चल रही है कि नहीं चल रही।
1: नहीं चल रही,
0: मुझे चलो आपके लिए फिर ऐसा
1: इंतजार अच्छा लगता है ना।
0: अब जदीद दौर में आ गए हैं तो क्या करें, जदीद दौर के अपने आते हैं ना। हाँ जी,
1: और भाई आपका खून का ग्रुप कौन सा है?
0: बी पॉजिटिव। क्यों आपने देना है मुझे?
1: नहीं ना, मुझे आपका लगता है ना, मुझे आपका लाभ दिखा था ना कि आपका जो किलो खून ना डाक वाला लोग वजह से ना बढ़ गया था। मैंने कहा किसी को जरूरत हो तो फिर मैं बता दू कि मेरे भाई से ले ले।
0: नहीं बढ़ गया तो वो सेहतमंद में हो गया, उन्होंने पहले कम हुआ पड़ा था, बराबर हो गया।
1: नहीं नहीं नहीं, इंशाल्लाह कम नहीं होगा, कल परसों फिर देखेंगे टाक वाले या पहाड़पुर वाले।
2: It's 5 o'clock.
3: It's 5 o'clock.
2: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
4: आपका अपना रेडियो, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
2: You are listening Radio Aman Network.
5: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
6: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मौसर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट दुकान नंबर 28 प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रابطہ कर सकते हैं। 2273

वेलकम बैक। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक दफा वाला सरकी प्रोग्राम वस्ते लोग किच वेलकम थी गया तमाम दोस्तों को। अब सूरत प्रोग्राम है तो सा रेडियो अमन 88.4 दे स्टूडियो को सुन दे पावे जी। रिश्ते उन्होंने कमजोरियां जी रहे ज्यादा थी ने वन दूरियां वद्दे पेन वजह केरी है वजह साको जरूर दसे सो असा गलत होने लेकिन अपनी जान को असा गलत न याद है इस वजह दे कोल भी सारे रिश्तेदारियां जी रही हैं दूर दूर तो खत्म थी ने वन एडा असा अपनी अना को जिद को जे रहे खत्म करे सो व सारे रिश्ते भी बहाल रहा सारे यार व सारे दोस्तियां भी बहाल रहा से अना जिद ते अपने करण रिश्ता को तुहारे बीच अगर अना है जिद है गलती तस्लीम ना करने पे तो अपने भिरा कोल अपने प्यू कोल अपनी अम्मी कोल गलती दी माजरत कर गिनो वाला है टाइम बिल्कुल ना सी तुहारे उते न सुनना एक दूजे को बर्दाश्त न करना एक दूजे को ऐसा क्यों बर्दाश्त न करें दे वजह है प्रयास छां तले क्यों बांधे वे घर के अंदर कोई दरेक दबूटा लाया उन्हें छां उन्दी घाटी उन्दी हाजी साहब हाजी साहब आदि के माली मामला जायदाद के झगड़े अक्सर खानदानों के इख्तलाफ पैदा कर लेने शाह राम हाजी साहब बहुत खूबसूरत गाल की है तुझा दिल लुट के जाता है हसद मुकाबले की सोच तो एक दूजे की कामयाबी जे रहे असा बर्दाश्त नहीं करें दे असा बर्दाश्त कर गिनू सारे रिश्ते जे रहे बिल्कुल कायम रह वैसे बिल्कुल सारे प्यार सर नाल कायम रह वैसी मुहब्बत सर नाल कायम रह वैसे हाजी साहब शाह राम बलोच साहब लिख देने को मैसेज दे उत्ते हसद के मुकाबले की सोच असा एक दूजे को कामयाबी बर्दाश्त नहीं करें दे इं वजह जरिए सारे रिश्तों की दूरियां बन वैन अगू लिख दिन के बजुर्गों की बेअदबी करें छोटा दे नाल सख्त रवैया रखे ने मुहब्बत को कम करे ने आए हाय खूबसूरत गालियां हाजी शाह बेराम आफ गर

0: सारे प्रोग्राम को जी पसंद करने पे
1: निकली है
0: गरा कौसिल्ला टांग तू नेमतुल्ला सयाल रमजान सयाल ते यकी सयाल बरादरी दिन प्रोग्राम सुनने पे बड़ी बहुत मेहरबानी है बहुत शुक्रिया दिन टॉपिक भी जबरदस्त है मुलाजिम हुसैन ते सलीम कटी खेल सादे कलचीना को सलाम।

0: प्रोग्राम द टाइम दिया थी ना बिल्कुल खत्म।
1: चोला में बनवाया चोले तेले सुबिदामी चोले।
0: आज जरा मैं टास्क पर

अपने टाइम बिल्कुल नहीं दे सकते उनकी गल तो भी अमल नहीं करेंगे बड़ा गल सारे बच्चे आवे सन तवा तीन साल सारे रिश्ते जो रहे कैमरा सन ये मुहब्त कैमरा सन घर के अंदर रौनक हो सन यार दोस्तों नाल बहार आओ सन जिंदगी रही सावान रही रही अपने बिरा अपने दोस्त अशरफ जोशी को दे सो इजाजत मेरा मालिक सच दिया सोचा दे हर सोच ध्यान दे काम आवे हर बंदे को इंसान बना इंसान इंसान दे काम आवे अरमान अरमान अरमान होंदे अरमान अरमान दे काम आवे दे तारिक जान जहान हुआ।

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: एक साफ सुथरा घर, चमकते बर्तन और ताजगी से भरपूर एहसास, हर घर की जरूरत और उस जरूरत का भरोसा है कमांडर। रोजमर्रा की जिद्दी दाव हो या बच्चों के खेल कूद से गंदे हुए कपड़े, कमांडर वॉशिंग पाउडर अपनी ताकतवर सफाई के साथ कपड़ों को बनाए ज्यादा साफ, ज्यादा रोशन और खुशबूदार। किचन में चिकनाई और मैल का मुकाबला अब मजीद आसान, कमांडर डिश वॉश। बर्तनों से चिकनाई को मोअस्सर तरीके से साफ करें और बर्तन को दे शानदार चमक, ताकि आपका किचन हमेशा साफ और खूबसूरत नजर आए। और जब बात हो जाती नगदाश्त की, तो कमांडर ब्यूटी सोप दे ताजगी, नरमी और दिलकश खुशबू का एहसास। हर नहाने के बाद खुद को महसूस करें पहले से ज्यादा तरोताजा और पुरएतमाद। मियार सफाई और एतमाद का नाम कमांडर। कपड़ों की बेहतरीन सफाई के लिए कमांडर वॉशिंग पाउडर। बर्तनों की शानदार चमक के लिए कमांडर डिश वॉश। रोजाना ताजगी और नरमी के लिए कमांडर ब्यूटी सोप। आज ही कमांडर प्रोडक्ट्स को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं और फर्क खुद महसूस करें। हर घर का एतमाद, हर दिन कमांडर की बेहतरीन सफाई। तो पता याद रखिए, रमजान मार्केट, दुकान नंबर 28, प्रोप्राइटर अजब खान के साथ इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, 0313-91-27-273।